0: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
1: 2 या 4?
0: 4।
1: कब तक वापस लौटेगा?
0: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
1: 4 या 5? 5।
2: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
3: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7 to 9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2 106.2

0: बॉलीवुड।
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटाएगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पाँच?
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
4: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Hey, relax.
1: तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: Big 106.2. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर
3: अलराज है। शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
0: The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
4: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
5: दो या चार?
4: चार।
5: कब तक वापस लौटेगा?
4: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
5: चार या
4: पांच?
6: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7 to 9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2। द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2।

0: If you've ever set a ringtone to Kya Mujhe Pyar Hai, you're in the right place. This is the Big Millennial Weekender, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जादेरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।

0: बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर। शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते है।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
0: द बिग मिक्स, वीकडेज 1 to 5 PM ओनली ऑन बिग 106.2, ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae।
3: भाई वो कुछ 2-4 हज़ार रुपए की जरूरत थी अपने।
4: दो या चार?
3: चार।
4: कब तक वापस आएगा?
3: यू ही, यही 4-5 दिन में।
4: चार या
3: पाँच?
5: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7 to 9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2।

0: Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटाएगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच?
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7 to 9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2

0: 106.2, the beat of Bollywood.
1: High-speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The big check-in is back, and it's bigger than ever. So pack your bags, because Big 106.2 is taking you to Germany. Presenting sponsor, Daniel Properties. This isn't just a holiday. It's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name, to 054-309-1062. The big check-in to Germany. Only on Big 106.2.
2: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
3: दो या चार?
2: चार।
3: कब तक वापस लौटाएगा?
2: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
3: चार या
2: पांच?
4: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
5: द बिग बिंज विद सिड, Saturday 7 to 9 PM and Sunday 10 AM to 12 PM only on Big 106.2,
0: the beat of Bollywood. Aap sun rahe hain Big 106.2, the beat of Bollywood.

आज हमको तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: Yeah, let's go. The big weekender. The biggest Bollywood hits non-stop. Non-stop hits. Big 106.2. The beat of Bollywood.

0: Millennials Unite. Your filmy flashback has officially begun. This is the Big Millennial Weekender, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जाद, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।

0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
3: दो या चार?
2: चार।
3: कब तक वापस लौटेगा?
2: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
3: चार या
2: पांच? पांच।
4: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
5: या लेट्स गो
0: द बिग वीकेंडर। The biggest Bollywood hits non-stop.
5: Non-stop hits.
0: Big 106.2. The beat of Bollywood.

39 पे भी नुसरत साहब की ही कवाली, ऑन 38 अगेन नुसरत साहब की कवाली, बट वेरी ब्यूटिफुली रिक्रिएटेड. फिलहाल प्लेइंग इन द टॉप 40 बिगेस्ट हिट्स ऑफ द वीक. This is the Big Bollywood Countdown, keeping you company. I'm Mansi, right here on Big 106.2, the beat of Bollywood. Moving on to number 37, a recreated gana, original gana, movie ka naam Shakti hai, bahut hi underrated movie hai of early 2000s. You have to watch if you're into good cinema. Karishma Kapoor, she is fantastic, saath mein Nana Patekar. But is gaane mein Shah Rukh Khan and Aishwarya the, original gaane mein recreate hua hai for Baby Do Die Do. Great reviews, Huma Qureshi and साकिब देयर सिबलिंग्स, इनके प्रोडक्शन हाउस की पहली मूवी है एंड ऑफिशियल ओटीटी रिलीज अनाउंस नहीं हुई है. जुलाई में ये मूवी रिलीज हुई थी थिएटर्स में, बट कहा जा रहा है एंड ऑफ सितंबर और अक्टूबर फर्स्ट वीक में ये ईदर ऑन Amazon प्राइम या Z5 पे आएगी. दिस नो ऑफिशियल अनाउंसमेंट, बट आई हैव टू से हुमा कुरैशी, शी नीड्स नो इंट्रोडक्शन. शी इज फैंटास्टिक एज एन एक्ट्रेस ऑन द स्क्रीन, चाहे वो गैंग्स ऑफ वसाईपुर हो, बदलापुर या फिर डेली क्राइम सीजन 3, एंड शी इज डन सम फैंटास्टिक वर्क. इन फैक्ट दिस इज अ रियल स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट हिट वुमन कॉल्ड बेबी करमरकर. On number 37 this week, on 36, once again a recreated gana. Gana YouTube sensation Mondal Brothers ka hai, recreate hua hai for Pati Patni aur Vodo.

0: इस हफ्ते बादशाह ने रिक्रिएट किया है गाना फ्रॉम पति पत्नी और वो दो ऑन नंबर 36।
1: द बिग बॉलीवुड काउंटडाउन, द पार्ट ऑफ द बिग वीकेंड, बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
4: दो या चार?
3: चार।
4: कब तक वापस लौटेगा?
3: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
4: चार या
3: पांच? पांच।
5: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
1: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। The Big Bollywood Countdown, Big 106.2, The Beat of Bollywood, Number 37.

0: On number 35 from Welcome to the Jungle, that was Ucha Lamba Kad. Yes, the biggest ensemble cast ever together. Also reunited Akshay Kumar and Raveena Tandon after decades. Playing in the top 40 biggest hits of the week, I'm Mansi. This is the big Bollywood countdown. Also talking about reunions, 11 September, that is... इसी वीक रिलीज हुई है हैवान. अक्षय कुमार सैफ अली खान ऑन द बिग स्क्रीन टुगेदर आफ्टर 18 इयर्स. प्रियदर्शन की मूवी है एंड अक्षय कुमार इज शिफ्टिंग अवे फ्रॉम हिज यूजुअल हीरोइक रोल्स. ही इज प्लेइंग परशुराम, एक नेगेटिव साइकोपैथिक कैरेक्टर इन दिस मूवी. रिसेंटली ऑन द 9th ऑफ सितंबर अक्षय कुमार सेलिब्रेटेड हिज 59th बर्थडे एंड ही शेयर्ड अ मैसेज अबाउट हिज कैरेक्टर फ्रॉम हैवान. व्हाट लुक्स ईविल मे नॉट ऑलवेज बी ईविल. सो या, ग्रेट रिव्यू सो फार हैवान के एंड आई हैवंट सीन द मूवी, बट प्लान है मेरा मिर्जापुर एंड हैवान थिएटर्स में देखने का. मूविंग ऑन, इस हफ्ते ऑन नंबर 34 अ सॉन्ग लाइक आई ऑलवेज से इवन आफ्टर डेकेड्स विल स्टिल बी अ पार्ट ऑफ आवर प्लेलिस्ट.
1: सानू सारियां विसर गईयां रावा वे केड़े पासे जाइए.
0: सतिंदर सरताज, जैस्मिन सैंडल्स फ्रॉम धुरंधर 2. एवरी सिंगल टाइम आई मिस एन एग्जिट, मैं यही गाना गाती हूँ इन माई हेड. इसी के साथ एक और गाना दैट इज हियर टू स्टे, आई थिंक जेन जी के जगजीत सिंह है अनुव जैन.

0: नंबर 26 पर. ऑन नंबर 25 अ ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन, वी गॉट आदित्य रिखारी, श्रेया घोषाल एंड रोचक कोहली.
1: जिन्नी सोनी लगदी है मनु किसे होर ना लगे लगे जिन्नी सोनी लगदी.
0: दिस वन इज दिल वाले चोर फ्रॉम पति पत्नी और वो दो.
2: नंबर 26.

0: number 24 this week from Musafir Cafe. That was Kaafi Hai Na. वैसे काफी नहीं है वो फैंस लाइक मी. अनाउंस कर दिया है नेटफ्लिक्स ने कि सीजन 2 आएगा, लेकिन कब आएगा ये नहीं पता है. डायरेक्टेड बाय रुचिर अरुण, द सीरीज इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स एंड दिस इज बेस्ड ऑन अ वेरी पॉपुलर हिंदी नॉवल बाय दिव्या प्रकाश जिसका नाम मुसाफिर कैफे ही है. वी कांट वेट फॉर सीजन 2. आई रियली वांट टू सी क्या चंदर सुधा के साथ जाएगा और ही इज गोना स्टे विद प्रीति एंड आई वांट टू नो के विनीत का इस पूरी कहानी में क्या रोल है. सो या आई थिंक वी हैव टू वेट फॉर अ वाइल फॉर सीजन 2. बट इफ यू लव मुसाफिर कैफे एंड ओवर द वीकेंड यू वांट टू वॉच समथिंग सिमिलर, समथिंग फील गुड, देर इज अ शो ऑन यूट्यूब. इट्स कॉल्ड 7.5 डेट्स. वेरी वेरी क्यूट. यूल एंजॉय इट इफ मुसाफिर कैफे वॉज योर वाइब. फिलहाल यहाँ पर ऑन नंबर 23 दिस वीक वी गॉट इरशाद कामिल, ए आर रहमान, वंस अगेन इम्तियाज अली की मैं वापस आऊंगा से.
1: तेरे पास
0: I'm a fan. I'm a fan of Vedang Rana after this movie. He's brilliant as the young Keenu. I'll not give you any spoilers. I loved this movie and मैंने already दो बारी देख लिया. That's my problem. If I like something ना, तो I keep just doing it. चाहे वो favorite breakfast हो, favorite TV show या फिर favorite movies. On number 22, we've got another beautiful one from Dhurandhar 2, Irshad Kamil once again.
2: गम है खत्म दिल ही ना माने फिर से रहना भरे.
0: अरिजीत सिंह की आवाज, शाश्वत सचदेव का म्यूजिक. Right here, playing you the top 40 biggest hits of the week. You have Big Bollywood Countdown and Mansi.
3: The Big Bollywood Countdown. The part of the Big Weekender. Big 106.2. The Beat of Bollywood.
4: High speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The Big Check-In is back. And it's bigger than ever. So pack your bags because Big 106.2 is taking you to Germany. This isn't just a holiday. It's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big Check-In, your name to 054-309-1062. The Big Check-In to Germany. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Only on Big 106.2.
3: The Big Bollywood Countdown. Big 106.2. The Beat of Bollywood. Number 23.

0: नंबर वन था ये गाना तीन हफ्तों तक, फिर आया नंबर थ्री पर, एंड नाउ इज मूव टू नंबर सेवन. दैट वाज आरी आरी फ्रॉम धुरंधर टू. Right here on Big 106.2, the beat of Bollywood. Yeh hai Big Bollywood Countdown. Main hoon Mansi. Moving on to number 6, a movie jisne box office pe tabahi macha di hai. Yes, so one of the most anticipated movies of 2026. And kaha ja raha hai ki Dhurandhar ka record agar koi movie tod payegi, that is going to be Toxic, a fairy tale for grown-ups. विशाल मिश्रा एंड राज शेखर इस हफ्ते ऑन नंबर 6. सो वी गॉट अ ब्रांड न्यू एंट्री. सीधा नंबर 5 पे एंट्री मारी है. हैवान का गाना है एंड हैवान मार्क्स द स्टार स्टडेड रीयूनियन ऑफ अक्षय कुमार एंड सैफ अली खान आफ्टर नियरली 2 decades. दिस इज को रिटन एंड डायरेक्टेड बाय प्रियदर्शन. This is Priyadarshan's 98th directorial milestone. The movie is an official Hindi remake of his acclaimed 2016 Malayalam thriller Opam. And I'll not give you any spoilers, but Akshay Kumar, Saif Ali Khan, Bhavan Irani ke saath, there is a special cameo by the legend Mohan Lal in this movie. Rangiyara, rangiyara, kisne ye jadu dara? Rangiyara, rangiyara, kisne ye jadu dara? Khoye khoye sapno mein rishton ka ek tara. Sukhwinder Singh and Romy on number 5 from Hewan this week.
1: This is the Big Bollywood Countdown.
2: All the music I love.
1: The part of the big weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood.
3: Arey ho Samba, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
4: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड.
3: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
4: मिडल ईस्ट का नंबर 1 ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है. शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में.
3: चलो चले अलराज.
5: UAE, the biggest laptop buyback is back at Sharif DG. This school season, get up to 500 dirhams off on your working or non-working laptop. Ready to supercharge your study sessions? Visit Sharif DG today and elevate your PC experience. T's and C's apply.
1: The Big Bollywood Countdown. The part of the big weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood. Number 6.

प्रीतम का म्यूजिक, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य की आवाज, एंड आई एम श्योर वी ऑल नो नंबर वन पे इट हैज टू बी इमरान हाशमी, इट हैज टू बी. तो फिर आओ, एंड इफ यू वंडरिंग कि अब कब आएंगे इमरान हाशमी ऑन द बिग स्क्रीन आफ्टर आवारा पन 2, देन वी विल गेट टू सी हिम अराउंड लेट नवंबर दिस ईयर. द प्रोजेक्ट इज कॉल्ड गन मास्टर G9. And this project marks a highly anticipated reunion. Two decades ke baad, the iconic 2005 ki collaboration Aashiq banaya aapne wali team, Imran Hashmi, with director Aditya Dutt and music composer Himesh Reshamya are coming back together. I'm already declaring this movie a hit. The movie also stars Janelia and Apar Shakti Khurana, and it is a romantic action entertainer. So yes, around late November, we'll get to see Imran Hashmi on the big screen again. Filhal, chipka hua hai Imran Hashmi ka ye gana number one par.

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
3: UAE, the biggest laptop buyback is back at Sharif DG. This school season, get up to 500 dirhams off on your working or non-working laptop. Ready to supercharge your study sessions? Visit Sharif DG today and elevate your PC experience. T's and C's apply.
4: If you've ever set a ringtone to Kya Mujhe Pyar Hai, you're in the right place. This is the Big Millennial Weekender, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.